रेडियो नेपाल ख नेपाल भाष्य समाचार जीव भेष पाखिन दिशा थौ नेपाल सम्बत चिन्स पिको द यहाँ लागा द्वितीय मदिक वगु वा नाप खुसी बा चल व लख तोपिया देनेक निसोम मुनु त सिगुदो विपदे लाना चिन्याम तनाचोङ्गु न्याम खापा जुगुदो बागलुङ जिल्ला चलख लाना छिम सिगुदो दासा छम तनाचोङ्गुदो शनिबार व आइतबार वगु वा या हुनी तमानकोला गाउँपालिका छे लाना चे दो दुम बुद्धिराज घरती व खुई खुद दुम भीमदेवी घरती सिगु ख अथे चलेख छे लाना ने दो दुम हस्तवीर श्रीपाली व वे कया जहान चलख लाना खुई न्याद या उडी सरा श्रीपाली सिगु ख अथे निसिखोला गाउँपालिका चुक्जा खोला चलख छे लाना छगु हे छे या पेम सिगुदो सुखुद या श्याम कुमार बिक चिन्सोद या मनोज च्याद या मुकेश व सोद या निशान बिक सिगुख अथे रङ्गीले चलख साछे लाना निद या सूर्य बहादुर घरती सिगुख शनिबार ताराखोला गाउँपालिका तस्मरे चलख छे लाना नेगुद या मन बहादुर रोका सिगुख थोयदोथी म्याग्दी या अन्नपूर्ण गाउँपालिका पेम व मालिका गाउँपालिका निम सिम लुया वगुदो थोयदोथी पाल्पा चलख लाना न्याम सिगुदो चलख लाना माथागढी गाउँपालिका निए न्याद दुम लिलबहादुर घरती मगर चिन्हेद दुम दिना घरती चिन्याद दुम झरना घरती सिगुख अथे माथागढी रूपसिया ने न्याद या शेरबहादुर चिदी व रुब्बी कोट गाउँपालिका ठिमुरे या नेगुद या कृष्ण कुमारी सारु सिगुख उखे मनाङ नार्पा भूमि गाउँपालिका हिमलुङ चपुगुई चपु चलख लाना निम सिगु व छिम तनाचोङ्गुदो तनाचो पिन्त माले त हेलिकप्टर छेलाचोङ्गुदो थोयदोती राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण खुसी बा चलख नेम नेस त्या छेज पिन्त लिच लाकोगु धागुदो जाजरकोट म्याग्दी बागलुङ नापया थिति जिल्ला हेलिकप्टर उद्धार यानाचुङ्गुदो विपदे लाना सचिव पी सोङ्गु छे पुङ्क व ने छका छे बच्चा सिङ्कुगुदो प्राधिकरणीय कथ स्थानीय मनुते त च्यागु लाग्सिम अपो एसएम सोगु ख देन्यङ्क दक्ले अपो नौलप्रासिया डेड गामे 544 मिलिलिटर कास्किया 85 मिलिलिटर व तनुया अत्रोली 472 मिलिमिटर सिवे अपो वा व गुख वा या हुनी थिति राजमर्गे पङ्ग जुयाचुङ्गुदु थौ देनिङ्क मौसम सुचुपुचु जुइगु धागुदु मौसम विज्ञान विभाग कथ पश्चिमी व पहाडी लागा छु थासे वा वैगु धागुदु विभाग कथ सुते तथ्याङ्क कथ ए पोखरा व घराई वा वैगु धुकुमा यागुदु तर मेमेथा वैगु मोजक धुकुमा यागुदु महाकवि सिद्धिदास महाजु या सचिव ने गुकगु बुदिया लसता थौ नसचा ज्याजो जुगुदो थौ यलगा द्वादशी सिद्धिदास महाजु या बुदिया हुने सिद्धिदास स्मृति समाज नेपाल भाषा मङ्का खल व मचिन्द्र क्लब या मङ्का गोसाला ए या सिद्धिदास चुक बताइटी सुते खुता इले मुना नसचा जुगु ख महाकवि सिद्धिदास महाजु नेपाल भाषा नीति थगु जीवन पाना ओयादिमा व्यक्तित्व खसा वेक्ल भाषा मुवासा जाति माई दयागु बिचा होला थकुगु ख सङ्घीय संसद या निगुली सदन या मुज्या थौ चोनितेङ्गुदु सुथे चिन्सता इले चोनीको मुज्या प्रधानमन्त्री बालन शाह या पाखे कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम छु नेपाल एन या व्यवस्था माकेगु विधेयक निहवेतेङ्गुदु अथे महिला बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गीता बादी महिला बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी छु नेपाल एन फिङ्केको विधेयक निवेदितङ्गुदो अथे स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता माया दुरुया विशेष निगु विधेयक निवेगु ज्यादल दो अथे राष्ट्रिय सभा मुजा इनेसिया छता इले चोनिगु गोसादु थौ मुज्या प्रधानमन्त्री बालनाथ शाह प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग आर्थिक द या प्रतिवेदन निवेगु ज्यादल दो
नेपाल प्रहरी पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेर शमशेर जबर या त छे ज या जिम्मा आम्बियो गुदो शनिबार चाने छे पाखे गिरफ्तारी लाया दि म चोलेर या त मिग आइतबार हिने छे ज या जिम्मा बिगु अपराध अनुसन्धान ज्याकु या एसपी रामेश्वर कार्की धाइदिगु ख सरकार पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेर शमशेर जबर या त गिरफ्तार यामा गु हुने खुलस्त यागु मधु एसएसपी खड्का सुरक्षा थ्रेट जुगुली चोलेन्द्र या त चाँ चाँ ज्याकु ती हया ते मागु धाइदिगु दु उङ्गु चाने अपराध अनुसन ज्याकुती टेकु या पुचल निवासे वे ढुङ्का चोलेन्द्रो या किचा प्रभु शमशेर या त फोन याना जानकारी बिगु ख सोर श्राद्ध या नापुङ हिम हिग पशुपति खुस मुनुतेस श्राद्ध यागुदु वा ओगु हुने थुसे आपा मुनुत अनुमथ्यङ्गु धागुदु भगवान गौतम बुद्धिया वंश कत साक्यपिन्त मसिकेत थिति देया साक्यपि छप्प छदि जुइगु आजु जुना साक्य महाविहार संज्ञा गोसाले छगु सल ज्याजो कोचागुदु भारतीय पलिस्तायनातोगु सम्राट अशोक क्लब व नेपा या साक्य महाविहार दुथि जुगु थो ज्याजुले भगवान बुद्ध नेपाली बुगुतका थ्वाटिकेगु ज्याजुगु ख साक्य महाविहार संज्ञा नाय शुभकाजी साक्य नायसुई जुगु ज्याजुले संज्ञा मु च्यान्जे संरत्न साक्य लस्कु सुनोचु तयादिको ख ज्याजुले सम्राट अशोक क्लब नाय रविन्द्र मोरे भारतीय साक्य पुत्र पिंस मोरे कुसुबा लगायत थिति निकुगु थर्चुगु याना वयाचुङ्गु ख कनादिसे इतिहासकालीन सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य व सम्राट अशोक बुद्ध धर्म प्रचार ऐतिहासिक पलाबारे ख कनादिल ज्याजुले दि साक्य फाउन्डेसन नाय माधवी साक्य महाविहार सङ्घ नोकु अमिरमान साक्य पिन्स सम्राट अशोक क्लब सन्तोष कुशुबा रामेश्वर कुशुबा धनञ्जय मौर्य जीवनदेव मौर्य पिन्स ख तयादिको ख महाविहार सङ्घ नाय शुभकाजी साक्य नापा नेपाल भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान आदि भारतवर्ष दुनिया लागु ख कुलादिल थुजोको सल ज्याजो जुयातु चुनिमागु ख वेक्ल बब्यादिल धासा सम्राट अशोक क्लब नाय डाक्टर रविन्द्र मोर्य भारतीय आकिव जुइगु बौद्ध महासम्मेलन नेपोती क्यात इनाप नाप यनादिल उगु ज्याजुले पूर्व मन्त्री एवं बौद्ध विद्वान डाक्टर केशवमान साक्य थगुनुगु ख तयादिगु ख नेपाल नापाङ्गु सामाजिक संस्था परोकार संस्था या चेद या पुलिस्ता दिवस परोपकार स्कुलले तजिग हङ्गुदु संस्था या जन्मदाता दयावीर सिंह कंशकार पूर्ण कद या च्वाता ए महानगरपालिका कार्यवाहक मेयर सुनिता डङ्गोल उलिजा यनादिको ख ज्याजुले मुपा डङ्गोल नेपाले नापा हिदान याना हिदान न जीवनदान जुई धैकु पुसा त म दयावीर सिंह कंशकार या त विद्यार्थी जीवने सामाजिक शिक्षा वेक या जीवनी बुनागु नेतना दिल हितकरवीर सिंह कंशकार या नायसुई झ्यागु ज्याजुले च्वाता देका गुनीति आर्थिक ग्वाली याना दिपी डाक्टर डम्बर बहादुर नेपाली मोहन बहादुर नेपाली भुवन प्रसाद प्रधान बिना वैद्य वरिष्ठ कलाकार श्याम तुलार धर्पिन्त हङ्गु ख स्थापनाकाले चुडानन्द वैद्य नासुई निसुङ्गु संस्था मु छ्यान्जे दयावीर सिंह कंशकार जुगु लुमुकु सेनाय हितकरवीर सिंह कंशकार थ अबु दयावीर सिंह कंशकार प्रसुति गृह परिकल्पनाकार जुगु खन यत्ना दिल इरानीय विदेश मन्त्री अब्बास अरागाची अमेरिका इरान वाफु हाक्न न्यासा थपी तयार दु धैदिको दु वासिङटन हर्मुज ल या ल हाक्न चाके त तेरान न्यने न्याकुगु नेनु या ज्याधल मयकु गुली इरान थते लिस ब्युकु ख गाजा या स्वास्थ्य मन्त्रालय इजरायल हमासदोति सोध दुनि ने पेद प्यालेस्टनी सिगु धागुदु उङ्गु अक्टोबर 10 निसे लागु जुगु युद्धब्राम ल्वापु दिकु सा तपी छतानिथ्या सैन्य कारबरी जुयाचुङ्गुदु सन् 2023 अक्टोबर 7 हमास इजरायल आक्रमण याना चिन्निस मुनुत स्यागु व निसत्या मुनुते त जोना यङ्के धुङ्का थो ल्वापु यागु ख मदिक वा वया भारते नेखुम मुनुत सिगुदु नेपालिया सीमालिक भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश मुनुत सिगु ख झाका पी खुम तनाचुङ्गु दुदास दोछी छे थुना ब्युगुदु वा या हुने उडिसा राज्य दोलन्द मुनुते त ब्याहिका ब्युगुदु
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह वा या खुसी बा या जोखिम अपोगोली वा चाका सुनित इनापेना दिगुदु मिग सामाजिक सञ्जाले वेक्ल विपदे मोदु पिन्त विचार ह्याका दिगुदु वेक्ल तना चो पिन्त माले त वा खापा जुमि त याक्न वास याना फि उषा मनुतुना दिगुदु थौ दे न्यङ्ख मौसम सिचु पिचु जुई हिमाली व पहाडी लागे नाप फुक्क लागे पच्चा वा वैगु तुकुमा यागुदु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या कथ सोनिगले मिग नि सङ्गु फुटी सिमे अपो क्वाज लुगु ख सुथे न्याता इजुया पि चागु मिनेटे लुगु सुर्द सनिलया न्याता इजुया नेगुगु मिनेटे बि नेपाल भाषे बुख कोचाल शुभ्या

दि रेडियो नेपालीन आङसिङ लामा शेर्पा ने सेरिकेकी साङ्गुर सेन्रोनाङ प्रतिनिधि सभाकी आरिङ सक्दुला विधेयक टुक ज्याङवाय सक्दुला सिलोन बालेन्द्र सागी छोक्ने ठिम डिक्ठिम तेजिन सितु कोर्की लोन्पो सोभिता गौतम कि केही नेपाल ऐन कि टडी कितु विधेयक नितोङ गेजु ग्यासुम जाक्नगुबिन तुग्राङ क्याने हम्पुम पेजा तेजिन चिसोक सुङ्क्योप लोन्पो सीताबादी कि हम्पुम पेजा तेजिन चिसोक सुङ्क्योप कोर्की केही नेपाल ऐन गिरो तोङ्गु विधेयक नितोङ गेजु ग्यासुम जाक्नाङसुङ तुरङ क्याने सक्दुला टोतेन लोन्पो निसा मेहता कि हामी ओमी थाप्ला याम्बा काङ थेप्से जो वमा चोङ्गु लाखाङ युङ मजब कोर्की विधेयक नितोङ गेजु ग्यासुम सुरक्षित मातृत्व तेजिन प्रजनन ठोतेन ओङछा कि पहिलो संशोधन विधेयक नितोङ गेजु ग्यासुम जाक्नाङसुङ तुग्राङ क्याने लोन्पो मेहता कि ठोतेन ल्याचेतपा तेजिन ठोतेन सोक्पी सुङ्क्योप कोर्की थेङ नि कि विधेयक नितोङ गेजु ग्यासुम ताङ राम राजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक नितोङ गेजु ग्यासुम प्रतिनिधि सभालाई जाक्नागुबिन सोकदुला छोकमी डोलप्रसाद अर्यालकी खाङरीला नाम गिरुवाकी क्योन जलवायु न्याय तेजिन बोटेकोसी त्रिशुली रङजुङ कलिया कोर्की छोकपी छोकचोकी कोसाकी तन्दोकला कितु बोदेमकी तुसो असोस लाकी गते चुब्जी छेर्मु तेन्तेन क्याउ खेन्थोक नाङसुङ प्रतिनिधि सभाकी आरिङ सक्दुला छोकमितुई गलुप असोज लाकी गते ज्ञानेजुन गते चुजिक्स्याक गेपु छरी जोसालेन्सी वाउ शतक ताङ टोकपी त्यामा फोकु क्योन्की कोर्ला सुङला सुनाङ वाय छोकमितुई शतक ताङ टोकपाला स्योर्ने मिराङ्गी सुचिक नासा गलुप मिराङ्गा तोरुप ताङ मिराङ्गाला क्योन फोकु सुङिन तोरुप त्यो छोलुप क्योन फोकु ताङ कलेला सुरुप त्योला टडिक कि गौ ताङ कुन सप्तेर गौला सुवा जाक्नाङसुङ दिपलाराङ छोकमितुई काली गण्डकीला वाउ टोकपाला स्योर्ने गण्डकी प्रदेशकी जोङखा चुचिकला क्योन फोकु ताङ साम्बातीवाला क्योन फोकु तपकी डिमडुल गाडी तुई जिन्क्योङ कितुपला चुङ्गुप कालेमेता जोगौला सुङला सुवाजाक नाङसुङ सोकमितुई शतक ताङ टोकपी त्यामा क्योन फोकु जोङखातीवाला लोक ताङ ग्याङसिङ सेवा जिन्क्योङ कि गौ बजारला चालक तुई गोङ फरूप ताङ कालो बजारी न्युङमो जोगौ कोर्ला सुङला सुनाङसुङ तुराङ क्याने छोकमितुई शतक टोकपा ताङ डुबान त्यामा फोकु क्योन कि थो देनगो सुवा जाक्नगिन रङजुङ कालिया ताङ क्यान थियु कालेमेता जब तन्दोकला ठिम कुतुग्राङ जोगौला खाक्सन पो दुप सुङसुङ राष्ट्रिय सभाकी आरिङ सक्दुला ग्यालखापकी दासा नासोक्ला गलुप स्योतक ताङ टोकपी त्यामा मिमाङसक गलुप लाम ताङ ग्यालाम तिवाला क्योन फोकु सामा जब ग्यास न्युङमो धुप ताङ गोमी ठिम्पोनला कोर्सुङ मगमिकी जिम्बु कोर्ला खाक्सन भोचिन वाय सक्दुकी शून्य तुसोला छोकमी तुई छरबङ्गी गेप्सीमा स्योतक टोकपा त्यामा क्योन फोकु मितिवाला तुसोला रङ सुङ्क्योप राहत ताङ रोक्रमकी गोला ताङ क्योन फोकु लाम तिव गमु जोने जिन्क्योङकी गोला सुङला सुवा जाक्नाङ वाय उङ्गिन ओतुप तुसेन तिवाला खाक्सन पोचि सुङ्क्योप ओतुप लाम तिव टरिकी गोला टरिकी गोलासङ सुङला सुनाङसुङ सिसी तन्दा ग्यास मेतुप न्याताङला खाक्सन पोसि दैलेक्की जलजलेला होतुप ग्यास देनगौला सुङला सुवा जाक्नाङसुङ तुरङ क्याने छोकमितु रङजुङ काले टडिकी तन्दोकला जौ संसदीय छोकपाला राष्ट्रिय सभाला जोगमा थुपुला सेमदुक्या नाङवाय छोकमितुई सङ्घीय टोसोकला सदनी कर्की ल्यागेन खाक्सन पोहोतुप सुङ्गिन सुङ्की राष्ट्रिय सभालासँग जाङ्ने रङजुङ कलेक कोर्की पिर्मी छोकपा जोगो प्रस्ताव क्यानाङ वाय तुङराङ क्याने छोकमितुई गोमी ठिम्पोन सोलेन्द्र प्रसाद जबराला कोर्सुङ मक्मिकी काङ क्याने झिम्बु हिन्स रूप कोर्ला टोसोकला ख्यान्थोक तिर्गोलासँग सुङला सुवा जाक्नाङुप सेन वाय सिलोन बालेन्द्र साहकी तन्दा यर्बी तुसोला स्योतक टोकपा ताङ डुबान दोके कले त्यो हुङथुपुतपकी चाकपुकी गोला मिमाङ त्योला सिउवाय हारिङ सामाजिक सञ्जाल त्यामा सिलोन साहकी रङजुङ कलेला स्योर्ने नासा गलुप त्योला कुदुत सिउ नगिन खाङबी मितिवाला सेम्सो सिउ नाङवाय सिलोन साहकी दिपरला रङजुङ कलेला स्योर्ने क्योन फोकु मिराङ कि ठोतेन गमुराङ ल्यामु डोसी सिने मुदुन क्या नगिन क्योन फोकुती तन्दोकला ट्याङा माला क्याने मेन्जुकी टडिकी गौ सुङसुङ असोज लाकी गते ज्ञानेजुन सुर गेमकी तुसोला थोक सोतक ताङ टोकपादोके रङजुङ कालेला स्योर्ने मिमेराङी सुचिक नासा गुलुपसङ सिलोन साकी ख्यान्थोक नाङसुङ चाङबी गाडीगुरुकी दासा ताङ फुस खुल्ला देतुप ताङ फाडसुर्की तुप मितिवाला च्याकबुकी गोलासङ खक्सन पोलाका ओसिङ तिराङ फाडसुर्की गोला ताङ काङ कलेरे चुङसिङ ट्याङ्गा मफोकु आङ बाह्र चौतिसला फोन तोङ्गुप्लासङ सिलोन साहकी मिमाङ त्यौला सुनाङ वाय
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक एआईआईबी की गवर्नर परिषद की थेङचु चिकी सक्दुला सक्सुक नगुब्ला कतार की दोहा फेपक्युलु नोरलोनपो डाक्टर स्वर्णिम वगलेतङ बैंक की चिखेप जो जीआई पर्ला थुक्थेत चुङवे थुक्थेतला नोरलोनपो वाकले की यम्बुला एआईआईबी की डोसुङ ग्याछा जोप्ला तङ रङजुङ कले जुक्ला रोक्रम ग्याछा जोप्ला लोक लाम तङ डिजिटल पूर्वाधार की अर्ग्याला सङ एआईआईबी की रोक्रम ग्याछा जोगुला सुनाङसुङ थुक्थेत की रिम्बाला चिखेप जो कि दाङमलक बोटिकोसिला वाउ शतक तेमा यम्बुला मिमाङ तुई फक गलुप तङ टङबाला क्योन फोकुला सेम्सो सुनागिन काङ थुपु रोक्रम कितु खेलेन क्या नाङसुङ तिरिम्बाला नोरलोनपो वाकले कि एआईआईबी कि डोसुङला जिन्क्योङ क्याउ लोक आयोजना तङ एक्सप्रेस लाम्तुई लोपजुङ मुसनाङ मुकी गोला सुनाङसुङ कृषि तेजिन नाथुङ लोनपो गीता चौधरी कि जुगथाम्बाला खाङरी कोर्की कुटनीतिला खाक्सनपोसी कोप 31 दके जम्बुलिङ मन्सला नाम गिरुवाताङ डेलो उतुप कोर्ला खाक्सनपोचे सुङवाए नाम गिरुवा कि तन्दोक्ला खाङरी सिजु स्रूप ल्यारिम्ला सुङलप्नगिन लोनपो चौधरी कि दि कोर एमबी तन्दोक्ला त्रङ मिदा क्याने खाङरी सकुलताङ जम्बुलिङ ताङ डेलो उतुप खाक्सनपो कोरिन्दुप सुङसुङ तन्दा नाम गिरुवा कि क्योन खाङरी सकुल्ला बङी ओतुप सुङिन लोनपो चौधरी कि तन्दा खाङरी कि खातियो सितु खाकी सोतियो ककु ताङ खाकी साङबुतियो सितु रिम्बा फरिन गलुप सुङसुङ लोनपो चौधरी कि तन्दा ग्यालाम्ला रङजुङ कलेतेमा बङ्गी क्योन फोकु सुङिन क्योन फोकु मितुई तन्दोक्ला जम्बुलिङ कि मितुई क्याउ रोक्रम ट्याङबु ताङ हुर्ता क्याने थगौ सुङसुङ मनाङ्गी हिमलुङ खाङरीला गलुप खाकी टक्पला स्योर्ने मिराङी नासगन वाए सिसी मिरा चिथाम्बा तोरुप सेन वाए मनाङ जोङकी चो मुक्तिप्रसाद खनालकी सेतुप नङसिन दाङ टप्ला मनाङकी नार्पा भूमि हिल्सोकपा वडा आङ्गकी हिमलुङ खाङरीकी बेस क्याम्पला वाउ खाकी टक्पला स्योर्ने मिराङी नासगलुप ताङ याम्बा मिरा चिथाम्बा तोरुप सेन वाए खाकी टक्पला स्वरूप मितिवाला छोलुप ताङ सुङक्योपकी तन्दोक्ला मिङमा शेर्पाकी गोठितला मिरा जी हेलिकप्टर तेमा थाकपा क्याङने ती दासला लक्लेन क्याउ हिंसिनाङ नाम येने सुङक्योपकी लाकाकी माथोबु जोङकी सहायक सो कृष्ण प्रसाद पौडेलकी ख्यान्थक नाङ्गुभिन खाकी टपला स्योर्ने तोरुप मिरा चिथाम्बा मितिय तेरी एम्बी मी दुप्ताङ खोङ ती सुङक्योपकी लाकाला रोक्रम गितुप्ला याङलुङ याम्बा सुङक्योप सोक्पा ताङ ती दासला तोङ्गुप टरिकी ओदुप सेन वाए मनाङकी चामे बजारला टक्पावासीमा क्याङने ओतुप मर्स्याङदी चाङबु बेतुप्लाका तन्दा कि ओतुप सेनवाए चाङबु बेतुप्ला मेसिन गेर्पु मेसीमा एम्बी माग्मिकी रोक्रमला चाङबु बेतुप्लाका कि ओतुप मनाङकी छाकरोक सिडियो

चु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ सानगिरी राङनी दा ढेनमुला ङ इन्दिरा थिङ प्रतिनिधि सभा लातिनी ला चिसाङरी लोलो लोलो गोडु विधेयक कादे थान बामुला चिसाङरी काइब्लोन बालेन्द्र शाह वाना ग्याम ठिम न्याय थिएन संसदीय मामिला ब्लोन सोभिता गौतम से केही नेपाल एन ला व्यवस्था लाभा विधेयक 2083 थान्स्यु बामुबा चुराङला चिन जामेकोला जाजाकोला लैङ्गिक थेन यौगिक अल्पसंख्यक थेन सामाजिक सुरक्षा ब्लोन सीता भादी से जामेकोला जाजाकोला लैङ्गिक थेन यौनिक अल्पसंख्यक थेन सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी तिलाई नेपाल एन संशोधन लबा विधेयक 2083 सभारी थान छिबामुबा चिसाङरी लुइथेन खाद्य स्वच्छता ब्लोन निशा मेहता से आमाला नेदा प्रतिस्थापन लबा सेकादे चुङबारी काबा गिक्छा संशोधन विधेयक 2083 थेन सुरक्षित मातृत्व थेन प्रजनन लुई पो गिक्छा संशोधन विधेयक 2083 थान छिबामुबा चुराङलासिन ब्लोन मेहता से लुई कर्मी थेन लुई घेन्दुनला सुरक्षा सम्बन्धी निशा संशोधन विधेयक 2083 थेन राम राजा प्रसाद सिंह लुई विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक 2083 सवारी थान्स्यु बामुबा चिसाङरी सुङबोन डोल प्रसाद अर्याल से ग्लिङ घाङ्री जलवायु पोबाला प्रभाव जलवायु न्याय थेन भोटे कोशी त्रिशुली विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिला चोहोला चुनाव चु असोज चुई भ्ली रेङेनला कुनु धिनीला निङ्यामा तोक लाछ्यु बामुला चुङाछा प्रतिनिधि सभाला तिनीला चिसाङरी सांसदका देशे चु असोज भ्रेला कुनु हेन्से तिलमा धोना ताइबा नाम्से खावा भाल ढुइथेन ब्लुम्बासे युल्डी ग्रेन छेती ताबासे योनान राहत उद्धार थेन अस्थायी व्यवस्थापनला घे योनान तिबारी सरकारला ध्यान छेङनाला स्यु बामुला सांसद कार्यसे भाल ढुइथेन ब्लुम्बा ग्याम ताबा छेतीला विवरण सार्वजनिक लाबारी सरकार थेन माग लाबान विपद थेन थुइबा समस्या थुम्ना लाबारी लोलोन ठिम तोला बिसी सुङ बामुबा सांसद कार्यसे भाल ढुइसे छेती शोभा जोङ कादेरी विद्युत थेन संचार सेवा सेङदोबा बजारला महँगी थेन म्लाङ बजारी कारण कादोबा सरकार थेन सदनडी मिनिसे मराङबा निराशादा गोतोला बिसी सुङबामुबा राष्ट्रिय सभाला तिनीला चिसाङरी सांसद कार्यसे विपद व्यवस्थापन डी शोभा संसदीय समितिरी राष्ट्रिय सभादा आथान बासे आपत्ति भान बामुला चिसाङला विशेष धुइरी लेग्म थान्छ्युबान सांसद कार्यसे संघीय संसदरी निनुन सदनला होतेन महत्व मुला सुङबान सरकार से राष्ट्रिय सभादा नुन थान्सी संयुक्त संसदीय समिति शोभारी प्रस्ताव लातोला बिसी सुङबामुबा चिसाङला आकस्मिक थिएन शून्य धुइरी सांसद कार्यसे समसामयिक ताम्री सरकारला ध्यान छेङनाला स्यु बामुबा चिसाङरी काइब्लोन बालेन्द्र शाह वाना ग्याम ठिम न्याय थेन संसदीय मामिला ब्लोन सोभिता गौतम से प्राकृतिक स्रोत थेन वित्त आयोगला नोर्दिङ 2081-82 ला तिथिङ प्रतिवेदन थान स्यु बामुबा राष्ट्रिय सभाला चिसाङ दोषी चुई घाला कुनु दिनेरी चिबा घेखोर्मुला बिहिबारला कुनुहेन्से लाना नाम ताइबा छ्याम भाल डुई थेन ब्लुम्बा ग्याम ह्युल नाङ्री मेन्दो निचुई घिकमिनी सिबामुला ह्युलबाङ विपद जोखिम न्यूनीकरण थेन व्यवस्थापन प्राधिकरण ला अनुसार तिनी न्यासे तिलमा न्यासे धोनारी विपद ग्याम मेन्दो घा मिनी माबा मुला बिसामा मेन्दो घा घाइते ताबा मुला

ई रेडियो नेपाल ठीक अरविन्द्र मिश्र सँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। प्रतिनिधि सभाक आजुक बैठक मायक दूध के प्रतिस्थापन करबाक वस्तु बिक्री वितरण नियंत्रण पहिल संशोधन विधेयक 2083 पर विचार कयल जा कहि प्रस्ताव स्वीकृत कयलक अछि। बैठक में स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मंत्री निशा मेहता प्रस्तुत कयल ई प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत भेल। प्रस्ताव प्रस्तुत करैत मंत्री मेहता मायक दूध के प्रतिस्थापन करबाक कानून के समय सापेक्ष संघीय कानून अनुसार कराब लागल बतौलनि। ओ संघीय कानून अनुसार तीन तहक सरकारक जिम्मेवारी कसूर सहित प्रावधान थप कयल जेबाक कारणे ई विधेयक संशोधन के विषय समावेश कयल बतौलनि। एहिसँ पहिने मायक दूध के प्रतिस्थापन करबाक वस्तु बिक्री वितरण नियंत्रण पहिल संशोधन विधेयक 2083 ऊपर विचार कयल जा कहि प्रस्तावक सैद्धांतिक छलफल में भाग लेत सांसद शोभा खनाल तीन दशक पश्चात बदलित कानून आब लागल प्रशंसा कयलनि। सांसद जनक सिंह धामी विधेयक समय सापेक्ष व्यवहारिक रहल बतौलनि। सांसद समीना

मियाँ, ई विधेयक कोनो कम्पनीक बिक्री, वितरण, प्रवर्धन करबाक मात्र नहि भऽ नवजात शिशु मायक स्वास्थ्य सङ्ग जोड़ल गेल विषय भेलाक कारणे मायक दूधके पहिल प्राथमिकतामे राखल जेबाक बात बतौलनि। सांसद बालापति शर्मा माय आ शिशुक स्वास्थ्यके संरक्षण करबा सन मायक दूधके प्रतिस्थापन करबाक वस्तु आनल जेबाक बात बतौलनि। एहिना विभिन्न सांसद लोकनि अपन अपन विचार व्यक्त कयने छलथि। एहिसँ पहिने प्रतिनिधि सभाक आजुक बैठकमे सांसद लोकनि एहि आसिन 8 गते सँ 11 गते धरिक निरन्तरताक वर्षाक कारणे आयल बाढ़ि आ भूस्खलन एवं डुबानसँ देशमे पैघ जनधनक क्षति भेलाक कारणे तत्काल राहत उद्धार आ स्थायी व्यवस्थापनक काज अविलम्ब शुरू करबाक लेल सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। सांसद लोकनि बाढ़ि आ भूस्खलनमे पड़ि 21 गोटेके मृत्यु, 5 गोटे बेपत्ता आ 5 गोटे घायल भेल आ कतेको परिवार घरबार विहीन भेला प्रति सरकारक ध्यान आकर्षण करबैत बेपत्ता सभक खोजी, घायल सभके उपचार, विस्थापित सभके उचित क्षतिपूर्तिक सङ्गे सुरक्षित व्यवस्थापन करबाक मांग कयलनि। सांसद लोकनि बाढ़ि भूस्खलन आ डुबानसँ भेल क्षतिक जिलागत यथार्थ विवरण सार्वजनिक करबाक लेल सरकारसँ मांग करैत विपद सङ्ग जुड़ल गेल समस्या समाधानक लेल अलगे कानून आवश्यक रहल बतौलनि। वर्षाक सङ्गे काली गण्डकीमे आयल बाढ़िक कारण गण्डकी प्रदेशक 11 जिलामे भारी क्षति पहुँचल। मोटरवेल पुल सभ पूर्ण रूपमे अवरुद्ध भेलासँ एक जिलासँ दोसर जिलाक यातायात सेवा अवरुद्ध भेलाक कारणे तत्काल समस्या समाधानक लेल पहल करबाक मांग कयलनि। सांसद सभ सरकार पूर्वाग्रहक आधार पर नागरिक सभ पकड़ल आ पकड़ाव करबा सन कार्य कानून विपरीत भेल कहैत एहि दिस गंभीर बनबाक लेल ध्यान आकर्षण करौलनि। सांसद लोकनि बाढ़ि आ भूस्खलनसँ क्षति पहुँचाओल जिला सभमे विद्युत तथा संचार सेवा सुचारू कयल जेबाक, सड़क पूर्वाधारक मरम्मत तथा पुल सभक पुनर्निर्माणमे तीव्रता देल जेबाक, बाजार महगी तथा काला बाजारी नियन्त्रण कयल जेबाक, सरकार आ सदन प्रति नागरिकमे देखल गेल निराशा प्रति गंभीर बनबाक सहितक विषयमे सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। राष्ट्रसभाक सांसद आ सदस्य लोकनि सदन प्रतिके जवाबदेहिता तथा संवैधानिक आयोग थप सशक्तिकरणके विषयमे सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। सभाक आजुक बैठकमे विशेष समयमे सांसद लोकनि पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबड़ाके प्रहरी नियन्त्रणमे लेल विषय, बाढ़ि भूस्खलनसँ भेल क्षति, पर्व त्योहारमे बाजार अनुगमन सहितक विषयमे सभा अध्यक्ष मार्फत सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीक सांसद जयन्ती देवी राय 4 दिनक लगातारक वर्षासँ देशक विभिन्न स्थानमे पड़ल प्रभाव सम्बन्धमे सरकारक ध्यान आकर्षण करबैत क्षतिग्रस्त तथा अवरुद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग तत्काल मरम्मतक सञ्चालनमे आनबाक लेल मांग कयलनि। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीक सांसद विष्णु बहादुर विश्वकर्मा निकट काल पर्व त्योहारमे खाद्यान्न, नून, तेल सहित दैनिक उपभोग वस्तुक मूल्य वृद्धि तथा कृत्रिम अभाव नहि होमय देबाक लेल बाजार अनुगमन बढ़ेबाक मांग कयलनि। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीक सांसद भुवन बहादुर सुनार मंत्री सभ सदनमे आबामे कठिन मानल टिप्पणी करैत सरकार सदन प्रति जवाबदेही होयबाक धारणा रखलनि। नेपाली कांग्रेसक सांसद अनन्त प्रसाद ढुंगाना पूर्व प्रधान न्यायाधीश जबराके प्रहरी नियन्त्रणमे लेल विषयमे आपत्ति जनौलनि। नेपाली कांग्रेसक सांसद चन्द्रबहादुर खेसी पूर्व प्रधान न्यायाधीश जबराके नियन्त्रणमे लेल विषयमे आपत्ति जनबैत विधिके शासनके सर्वोपरि मानि सरकार आगू बढ़बाक धारणा व्यक्त कयलनि। नेकपा एमालेक सांसद मीना सिंह रखाल विपदके पूर्व सूचना प्राप्त भेलाक बाद नागरिकके सुरक्षा स्थानमे लऽ जेबाक तथा उद्धारक लेल पूर्व तैयारीमे जोर देलनि। ओ बाढ़ि भूस्खलनसँ सड़क, घर तथा पुल पर क्षति पहुँचल उल्लेख करैत अगिलगीके घटनामे प्रभावित के राहत के व्यवस्था करबाक मांग कयलनि। अहिना नेकपा एमालेक सांसद सोमनाथ पोर्तेल अविरल बरसातक कारण देशक विभिन्न स्थानमे आयल बाढ़ि भूस्खलनसँ प्रभावितके राहत उपलब्ध करेबाक लेल मांग कयलनि। बेपत्ता खोजी, घायलके शीघ्र उपचार तथा विस्थापित परिवारके पुनर्स्थापना करबाक लेल सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। एहिना जनता समाजवादी पार्टी नेपालक सांसद मोहम्मद खालिद संवैधानिक आयोगके थप सशक्त बनेबाक मांग कयलनि। रिक्त पद पर पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अविलम्ब आगू बढ़ेबाक लेल आयोगके पर्याप्त बजट उपलब्ध करेबाक लेल तथा आयोग आ वा खारिज करबाक आ नहि करबाक सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। संवैधानिक आयोग सिफारिश अनिवार्य कारणक लेल सेहो ओ आग्रह कयलनि। आजुक बैठकमे प्रधानमंत्री वालेन्द्र शाहक दिशा कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री सविता गौतम, राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग आर्थिक वर्ष 2081-82 वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश कयलनि। राष्ट्रसभाक दोसर बैठक एहि आसिन 15 गते बृहस्पति दिन अपराह्न 1:15 बजे बैसत।
मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव प्रदेशक सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन के थप पारदर्शी जवाबदेही आ प्रभावकारी बनबत लऽ जेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। आइ मध्यक राजधानी जनकपुरधाम स्थित मध्य प्रदेशक पहिल सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय जवाबदेहिता मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यादव सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढ़ीकरण मार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रवाह आ विकास परिणाम हासिल करबाक लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। ओ संघीय शासन प्रणालीक संगे प्रदेश सरकार के योजना तर्जुमा बजट व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त भेलाक कारणे सीमित स्रोत साधन के अधिकतम दक्ष आ पारदर्शी उपयोग आवश्यक रहल उल्लेख कयलनि। मूल्यांकन प्रदेशक वित्तीय पारदर्शिता बजट योजना तथा खर्च व्यवस्थापन आ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन के आधारभूत संरचना निर्माण में सकारात्मक प्रगति देखाओल ओ बतौलनि। मूल्यांकन प्रक्रिया सम्पन्न करबाक लेल सहयोग केनिहार प्रदेशक अर्थ मंत्रालय मूल्यांकन टोली संबंधित सरकारी निकाय तथा संस्था सबके धन्यवाद दैत ओ प्राविधिक तथा ज्ञान संबंधी सहयोगक लेल एशियाली विकास बैंक प्रति सेहो आभार व्यक्त कयलनि। मध्य प्रदेशक अर्थमंत्री युवराज भट्टराय सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय जवाबदेहिता मूल्यांकन प्रतिवेदन आर्थिक सुशासन के महत्वपूर्ण आधार भेल बतौलनि। प्रतिवेदन आर्थिक सुशासन के बाट बहरेबा में सहयोग करबाक उल्लेख करैत ओ अगला दिन में नीति निर्माण व्यवस्था आ प्रणाली में सुधार करैत संस्थागत सुधार में ध्यान केन्द्रित कयल जेबाक बात बतौलनि। आर्थिक पत्रकार समाज नेपाल मध्य प्रदेश सरकार एडीबीक संयुक्त आयोजन में भेल कार्यक्रम में प्रदेश सरकारक सचिव प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह सेजन के केंद्रीय अध्यक्ष भागवत भट्टराय आर्थिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न निकायक प्रतिनिधि तथा सरोकार वालक सहभागिता छल। पछिला वर्षाक कारण ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर 24 धापा खेल में सोबित कुमार थापाक 2.5 तल्लाक घर पलटी खाकर क्षति भेल अछि। जिला प्रहरी परिसर ललितपुरक प्रवक्ता गौतम मिश्रक अनुसार थापाक घर आइ भिनसर नदी में पहुँचलाक बाद कोनो मानवीय क्षति नहि भेल। प्रवक्ता मिश्र कहलनि जे ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर 24 के कार्यालय निकट धापा खेल में 3 आना में बनल 2.5 तल्लाक घर भिनसर पलटी खेलक। घर जोखिम में रहल देखलाक बाद रवि दिन सब सामान निकालल गेल छल। इससे पहिने आई एहि घर से जोड़ल गेल भानसा घर सेहो लगभग 20 मीटर नीचा खसलाक बाद ई घर जोखिम में पड़ल अनुमान कयल गेल छल। ओहि घर में बैसित आयल थापाक परिवार के सुरक्षित स्थान में लऽ गेल। घर खोला में नदी में गेलाक बाद थप जोखिम न्यूनीकरण के लेल प्रहरी टोली खटल छल। ई पलटी खेला पर जोखिम में रहल पश्चिम दिश निकट रहल अमृता सुनवार के घर सेहो खाली कराओल गेल छल। सप्तरिक बलान बिहुल गांव पालिका वार्ड नंबर 4 के रामविलास यादव के हाथ में 1 बीघा जमीन के लाल पुर्जा मात्र रहल अछि। कागज में अखन ओ 1 बीघा जमीन के मालिक अछि, मुदा जमीन कतय छै ओ देखायब कठिन अछि। वर्षों से अनुपजबैत आयल खेत अखन बलान नदी के ओहि बाढ़ि में हरा गेल अछि। बीतल भादव मास में स्थानीय बलान नदी में आयल बाढ़ि से हुनक नदी किनार में रहल खेतियोग्य जमीन कटान कलाक बाद परिवार के जीविकोपार्जन के आधार समाप्त भेल बतौलनि अछि। आब परिवार के गुजारा कोना चलायब एहि चिंता से ओ चिंतित रहल। यादव कहे छथि परिवार के गुजारा चलेबाक लेल एकटा मात्र आधार छल खेती पाती। ई नदी में बहलाक बाद आब सुकुम्बासी बनबाक चिंता बढ़ल अछि। एक दिस नदी के बहाव कठित गेल अछि, दोसर दिस किसान के खेत कम होइत गेल अछि। एहिना अनेको किसान के व्यथा रहल बताओल गेल अछि। नेपालगंज रंगशाला में उच्च क्षमताक प्रकाश प्रणाली सरकार मुख्य शहर में व्यावसायिक खेलकूद के विकासक संगे रात्रिकालीन प्रतियोगिता संचालन करबाक योजना अंतर्गत एहिठामक रंगशाला के फ्लोर लाइट जरान सहित अस्तोन्नति करय लागल अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: है।
1: ओ बाबा ल हामी यताबाट जान्छ, हामी जाने बाटो आएको ल, फेरि फेरि भेटौँला है।
2: ल ल राम्रोसँग जाऊ तिमीहरू पनि।
1: ल ल
3: तिम्रो घर कता नि? रातो चाहिँ बाँकी छ, एक किसिम बसिकन के कुरा जाने।